ना अल उंडुल की तुली उंडुल नम एल बेला जो जी जो आता है वो ये बखा के बोली थी ये दा उलुल नम ये ये बा दा इंदु अलबा दुए दा हो अर्तो इंद आला है अलबा दुए दा दूर दूर होना एल ना ये अल अर्दिक बने आई वो आते जी अल दिंग अल ने जी वो तू का जाए इन देने ये ना आजे ये तुल्दू जी बहाने ये देशन जीनस कांदी खेलन अल क्वादी खेलन और कबूल ना दुर्गे ने नुंकम में इनंग नमनिंग का इनंग क्वा नुंकनी मिन दुगु ले सब नमिन से लेगर नम इन से नुंगनी ने दियो फिसका दिल नमका नमक करना खेला नम नुंगनी ने कमी दिल नम फिसका नमका क्वा नम नुंपिस सिंह कमी है किसी ने सुंगा कि आये ना सुंगा नंग दायं अर्र खरुल केंग क्वा अलब यंगे ओला कि अलब उत्का न कगिंग कुरुंगा खोएंगे न कहें कगे कासु तुंगा न तुंगा पोते ही अनमिन से कगे पोता यें जी अलब जो नस जेवल पोर्दों दे अलब मेरंगल देंगा दुए अलब ये अलका वेले इनं कौन भी किंग कगे कासु ते यां दुआ से कगे रुब्बा क्या अलमे यल नहीं रिपाव जा ये बकें कगे पाजी किंगाइं किदाइंगाइं तुले नाइंडाइं बुरुंग इलाल ते यही निम किए कगे पासो